0: इस
1: माल माल ट्रेवल
2: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
3: यू मीन सफल ट्रेवल?
2: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
3: एक बार आजमाइए जरूर साउथ हॉल ट्रेवल।
2: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
3: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
4: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250। दैट्स 0161-250-1250।
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.
7: Alif.

0: तारिक हलाल ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए ऑन tarikhalal.com और घर बैठे ताजा मीट हासिल कीजिए.
1: This is Laika Radio.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.

0: जैसे
1: सेफको माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स,
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियां लाए।
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
3: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
4: यू मीन सफल ट्रेवल?
5: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
4: एक बार आजमाइए जरूर साउथ होल ट्रेवल।
3: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
4: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
6: कॉल साउथ होल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250। दैट्स 0161-250-1250।
7: अरे चंचल कुमारी, साइको ऑनर शहर इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, लॉन्ग टाइम, कैसी हो तू?
8: खातून कौन थी?
9: एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस।
8: तो पुलिस में जाती, वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हर पति एनिमल,
10: एक पति दो दो कंफ्यूजन और फुल फैमिली एंटरटेनमेंट। 15th में से प्रजापति बंडे मचाएंगे ऐसा बवाल कि आप भी पूछेंगे कौन पत्नी कौन वो, पति पत्नी और वो दो, इन सिनेमाज नेशन वाइड फ्रॉम द 15th of May।
11: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
12: इन रियल एस्टेट, लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
11: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
12: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
11: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: For gold, silver and platinum bars you can trust, visit buybullion24.co.uk. Competitive prices, secure online buying and reliable service across the UK. For more details, WhatsApp on 0737522418. Choose buybullion24.co.uk today.
14: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath. Over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurvedic Veda that fits your life.
15: Bollywood's biggest 90s songs non-stop.

0: Song into the Sunshine on Leica Radio Network.
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी.

0: जी अब तो ऐसे ही होगा लगता है, आज और कल या कम से कम दो तीन दिन ऐसे ही सावन में आग लगेगी। सुनो पागल दीवाने, चैन से न रहने देंगे कम से कम दोपहर एक बजे तक। ड्राइव केयरफुली प्लीज, गाड़ी को चलाना बाबू, जरा वाइपर चलते रहने चाहिए, गलती ना हो कोई। गलती हो तो मान लो, और ना हो तो गलत फहमी हो सकती है।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
0: और अगर गलत फहमी हो तो उसे दूर कर लो। एक अच्छी सी बात कहते हैं, गलती हो तो मान लो और गलत फहमी हो तो उसे दूर कर लो, यही अच्छी और पुरसुकून जिंदगी गुजारने का राज है। दोनों कानों के बीच में एक रास्ता बनाइए, कोई बात अगर इधर से आ जाए ऐसी जो आपको नागवार गुजरे, उसे दूसरी तरफ से निकाल दो।

बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बरसात का होना होता है तो बरसात होती है, बारिश होके रहती है और मैं और तुम कुछ नहीं कर सकते। Once again, एक बार फिर से खुश आमदीद। बैक टू बैक दो गाने बल्कि तीन गाने, प्रोग्राम का वार्म अप टाइम, मिड मॉर्निंग टाइम, ये सकअप ऑफ टीवी देवने।

0: किसी राह पे भूल के रास्ता, देखो ये कौन आया,
1: मुझको उड़ाना।
0: याद आई बरसों बाद आज वो पहली बारिश, याद आई वो आज पहली बारिश जब उसे एक नजर देखा था और तुमको उड़ा लाया।
2: ला ला ला ला ला।
0: सुरेश वाडेकर, आशा भोसले। प्रोग्राम की शुरुआत रब्बी जलील के उस बाबरकत नाम से जो मेरे और आपके दिलों के भेद खूब जानता है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अपने काम पे, अपनी ड्यूटी की जगह पर, अपने अपने टूल्स, अपने अपने औजारों के साथ पहुंच चुके होंगे। और अगर ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज ध्यान जरा मेरी तरफ।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Currency creator बाकी बातें बाद में। American dollar 1.35, Indian rupees में 129.50, पाकिस्तानी रुपीज 378.18, बांग्लादेशी टका 167.69, श्रीलंकन रुपीज 437.48 और अफगानी रुपीज 87.32।
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. The new Asian sound for the Northwest. This is LIKA Radio, Greater Manchester.
4: LIKA Radio.
3: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: Yeah, pehle sunne ka bhav, uske baad Urdu ke khas khas headlines. Hamare aaj UK mein 1 gram gold ki qeemat ho gayi 111 pounds 23 pence, yani 111 pound 23 pennies, jabki Pakistani rupees mein 41,150 rupees.
3: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
4: Leica Radio.
3: This is Leica Radio news update.
0: Ji haan, aur ab Urdu ki khas khas headlines. पाकिस्तान को IMF से 1.3 अरब डॉलर मौसूल। बरतानिया में आबनाए हरमस के तहफ्फुज़ के लिए बैन अल-अक़वामी फौजी मिशन में शामिल। और भारतीय शहरी अपनी कम्युनिटी वालों को नौकरियां दिलवाने में जालसाजी करते हैं, बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट। आबनाए हरमस में चीनी सुपर टैंकर की नकलो हरकत। चीनी वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी की कोशिशें मजीद तेज कर दे। डोनाल्ड ट्रंप की सेहत पर सवालात, अमरीकी सदर 26 मई को मुकम्मल तिब्बी मुआयना करवाएंगे। और ईरान जंग पर 29 अरब डॉलर्स खर्च हुए, अमरीकी वजीर दिफा ने मजीद 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स मांग लिए हैं। सऊदी वलीहद और अमाराती सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। जनूबी लबनान में इसराइली फौजी के हमले, 13 अफराद जान बहक हो गए। तो ये तो थी उर्दू की चंद खास खास हेडलाइंस। मजीद अपडेट जानने के लिए सुनते रहिएगा लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर।
5: ये है लाइका रेडियो।
6: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
7: यू मीन सबटल ट्रेवल?
6: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
7: एक बार आजमाइए जरूर सबटल ट्रेवल।
6: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
7: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
8: कॉल सबटल ट्रेवल 24 hours a day 7 days a week ऑन 0161 250 1250। दैट्स 0161 250 1250।
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
12: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
11: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
12: And you didn't pay those massive roaming charges?
11: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
13: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
14: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स
15: जस्ट एड हॉट वाटर वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी शीरा पोहा भाजी वेज बिरयानी दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट
14: जीरो मेस नो स्ट्रेस सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स
3: Like a Radio Network proud hospitality partner Ragasan This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0161 250 8222 or sales@leicamedia.co.uk. This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th.
0: Right, Janab, welcome back after short break. Budh ki subha. Jaj midday. Midweek, दो दिन इधर दो दिन उधर बीच में कुमार सानू की गजल मई महीने की 13 तारीख हमारी डायरी का पन्ना सूना सूना अगर आपकी आज की डेट के हवाले से कोई भी उम्मीद हो कोई भी बात हो तो मुझे मत बताना जज जोगे

0: तुम्हें देखकर आजकल लिख रहा हूँ। वैसे गजल की मीनिंग पता है क्या है? जी हाँ, गजल के मानी यही है कि किसी को देखकर कुछ लिखना, कुछ कहना। कहते हैं दिल को बहलाने के लिए कुछ तो चाहिए साहब, दिल के बहलाने के लिए कुछ तो चाहिए। चाहना सही, चाय ही सही। ये सकप ऑफ टीवी दिव्य ताबिश, गरम गरम मेरी चाय की प्याली और आपका मेरा साथ। शुक्रिया ब्री में हमारे साथ हैं जी लेला, अमन और निगज जी, चंदा जी और ऑल्डम में शिराज हमारे साथ हैं। शिराज कहाँ हो तुम? रोजडेल में अदनान, गजाला जमी और ऑल्डम ही में आसिम हमारे साथ हैं। आसिम वेलकम। कजूरी जी हमारे साथ हैं और आसिया कहती हैं क्या बात है, आज बहुत मूड में हैं। असल में दो तीन दिन के गैप के बाद अचानक बारिश हो गई और बादल आ गए, और जब ये बादल आते हैं तो न जाने मुझे क्या होता है। अब क्या करें, पुरानी आदतें हैं, जाते जाते ही जाएंगी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: हाँ जी, इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाने के लिए आज के रेट SBI वाले दे रहे हैं 128.65 रुपए वैसे।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Greater Manchester. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: Right, जनाब, आपको बताया कल जो मैच हुआ था गुजरात टाइटंस और सनराइज हैदराबाद के दरमियान, तो ये जो मैच जीत लिया था गुजरात टाइटंस ने और रन बनाए थे 168 रन और 5 उनके खिलाड़ी आउट हुए थे 168.5। और आज मैच होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर के दरमियान और ये मैच शुरू होगा तकरीबन कोई 5 घंटे के बाद।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
0: हाँ जी, बात चली थी कि देखो कौन आया। तुम कहती हो तुम्हें फूलों से मोहब्बत है, पर जब फूल खिलते हैं तो तुम उन्हें तोड़ लेती हो। तुम कहती हो तुम्हें बारिश से बहुत मोहब्बत है, पर जब बारिश होती है तो तुम छुपती फिरती हो। तुम कहती हो तुम्हें हवाओं से मोहब्बत है, और जब हवा चलती है तो तुम खिड़कियां बंद कर लेती हो। मैं उस वक्त से डरता हूँ जब तुम कहती हो मुझे तुमसे मोहब्बत है।

0: सोए नजारो सोई बहारो, देखो ये कौन आ गया। रोज आ जाता है रोज,
1: देखो ये कौन आ गया।
0: चलो अब हल्का सा मुस्करा दो।
1: रूठे हुए को मना,
0: रूठने किसी को नहीं देता मैं। अभी तो इब्तिदाए इश्क है, प्रोग्राम का पहला हिस्सा है, बहुत सारे हिस्से बाकी हैं अभी।
2: Like a radio.
0: चलो अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो। बीवी ने शोहर से कहा कि आप बहुत भोले हैं, यकीन आया मेरी बात का? बीवी ने अपने मियां से कहा आप बहुत भोले हैं, आपको ना हर कोई बेवकूफ बना सकता है। शोहर ने कहा हाँ तो शुरुआत तो तुम्हारे अब्बा ने ही की, अब्बा ने की थी। शुरुआत तो तुम्हारे अब्बा ने की थी।
2: This is Like a Radio. The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
3: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
2: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
3: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
2: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
5: This Eid al-Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
6: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
7: यू मीन सफल ट्रेवल?
6: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
7: एक बार आजमाइए जरूर सफल ट्रेवल।
6: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
7: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
8: कॉल सफल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250. दैट्स 0161-250-1250.
9: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही।
10: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
2: Ibn and Tabish on Leica Radio, Greater Manchester.
0: Right, Janab, if the talk was about bholepan, then... एक और पाकिस्तानी क्लासिक सॉन्ग आपको सुनवाते हैं, बिल्कुल भोला भाला सा सॉन्ग, बिल्कुल मेरी तरह।

0: हाँ जी भोला भोला मेरा नाम और हंसना गाना मेरा काम। शुक्रिया यासिर। यासिर हमारे साथ होते हैं रोजाना, ड्राइव करते हैं और बस इंतजार करते हैं कि कब ताबिश भाई चीखेंगे और चिल्लाएंगे। और जो बातें आपने हमसे कही हैं और पूछी यासिर, असल में उसको कहते हैं फनकार। जी हाँ, ऐसे फनकारी जो फनकारी होते हैं ना, वो फिर अपनी फनकारी तो दिखाते हैं। और इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। फरजाना हमारे साथ है वॉरिंगटन में, हमारी बहन, बहुत शुक्रिया। लिखते हैं ताबिश भाई आ गए। जी हाँ, तकरीबन 55 मिनट हो गए। मुदस्सिर सज्जाद हमारे साथ हैं। मुदस्सिर हाउ आर यू, वेरी नाइस सॉन्ग ताबिश भाई, शुक्रिया। मलेगा प्रेस्टन में हमारे साथ जाहिद अब्बास भाई, खुशबू वल्ली भाई। आसिया हमारे साथ बोल्टन में, और लीमा अख्तर हैं, कोई लीमा अख्तर सुन रही थी सुबह डोनी ब्रास्को को और हमें भी सुन रही हैं। लीमा वेलकम करते हैं आपको कि आप हमें सुन रही हैं। भाई ये नहीं पता कि आप कहाँ सुन रही हैं, लंदन में या हमारे यहाँ मैनचेस्टर में। और शहजाद वालेकुम सलाम, जीते रहिए। कराची में फरीद हुसैन भाई, नाहिद अख्तर का वो सॉन्ग जो कल आपने हमसे कहा था, हमने रिकॉर्ड करवाया तो है, देखें शायद अगर मुझे मिल गया तो मैं जरूर अगले आवर में लगाऊंगा। अब्रार वालेकुम सलाम, आपने लिखा कैसे हैं जनाब, हम बिल्कुल ठीक हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। अतीक जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। उमर और रुखसाना आमिर काम की जानिब रवा दवा। राशिद भाई रेड क्लिफ में, और महमूद खालिद महमूद भाई नेल्सन में, और नेल्सन के साथ साथ हैं बर्ले में, वहां नौशाद अली भाई।
1: I like a radio classic. Plays now.

0: फिर कहीं जाके मुझे सांस आए। मोहित चौहान और श्रेया घोषाल प्रोग्राम के बैक टू बैक में दूसरा गाना जब तक है जान। कहते हैं कहाँ पूरी होती हैं दिल की सभी ख्वाहिशें, कहाँ पूरी होती हैं दिल की सभी ख्वाहिशें, कि बारिश भी हो, यार भी हो और पास भी हो।
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: मुझे प्यार है।
1: किसी की जिंदगी में किसी का इंतजार और उसके बाद फिर एक लंबी जुदाई, हाँ ना ऐसे ही होता है। पाकिस्तान में मीरपुर आजाद कश्मीर में हमारी एक छोटी सी बहना है, हमें सुनती है रोजाना और
2: like radio.
1: शुक्रिया तबस्सुम, हमारे यहाँ होती है यहाँ मैनचेस्टर में, और गजल लिख के भेजिए छह शेरों की। इतनी लंबी गजल तबस्सुम नहीं पढ़ सकता, I'm sorry। छोटे छोटे शेर अच्छे लगते हैं, जैसे जैसे ये मुझे आसिम ने लिख के भेजा कि मोहब्बत तो बारिश है। अरे वाह, मोहब्बत तो बारिश है, मोहब्बत तो बारिश है, जिसे छूने की तमन्ना हर कोई रखता है, मगर हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं।
2: Like a Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: जी हाँ जी, फिर करेंसी की बात कर लें। इतनी मर्तबा पाउंड का जिक्र करता हूँ कि मैं जो है वो US डॉलर 1.35, इंडियन रुपीज में 129.50, पाकिस्तानी रुपीज में 378.18, बांग्लादेशी टका 167.69, श्रीलंकन रुपीज 437.48 और अफगानी रुपीज 87.32।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio.
3: LIKA Radio.
2: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
1: हाँ जी, गोल्ड का रेट आपको बता दें एक बार फिर से कि हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत है 111.23 पेनिया, 111 pounds 23 pence।
2: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट। विजिट hartyhanks.com।
3: लाइक अ रेडियो।

0: हाँ जी लाइका एक्स्ट्रा, यानी कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया। लाइका रेडियो का हमारा अपना यूट्यूब चैनल है और वहाँ पे जाके आप लाइका एक्स्ट्रा पे हमारे इस पॉडकास्ट को जरूर देखा करें। इस मरतब आप होस्ट कर रहे हैं हमारे डोनी ब्रास को और टाइटल है वेडिंग एंड बायन, शादी के मुतालिक फोर्स मैरिजेस और बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो बरतानिया में हमारे आने वाले बच्चों के लिए लाहा हैं। इस सिलसिले में मालूम के लिए आप हमारे इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा।
1: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colorful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation, and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to Derby Theatre 12th to the 16th of May. For tickets and more info, click derbytheatre.co.uk. Radio partner Leica Radio.
2: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
3: यू मीन सॉफ्टॉल ट्रेवल?
2: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
3: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टॉल ट्रेवल।
2: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
3: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
4: कॉल सॉफ्टॉल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250। दैट्स 0161-250-1250।
5: एक मसालेदार चाय के बारे में सोचते ही बस एक ही नाम याद आए, यूनिक मसाला चाय। इस सर्दी मजा लीजिए यूनिक चाय के अलग अलग मसाले फ्लेवर्स का। सिर्फ गर्म पानी लो और यूनिक चाय के साथ घोल लो। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सबकी फेवरेट यूनिक मसाला चाय तैयार।
6: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0161-250-8222 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।

0: बताइए इस कदर लोड शेडिंग है पाकिस्तान में, अगर इतनी बिजली वाफिर मकदार में है तो फिर लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए भाई। बहरहाल जी, बिजली भरी थी अंग अंग में। फरीद भाई, आपकी फरमाइश थी, इस गाने को हमने बड़ी मुश्किलों से ढूंढा। अब बोल्टन में सहर हमारे साथ हैं। सहर, थैंक यू वेरी मच, वेलकम करते हैं आपको। गुलाम अली भाई, बेहद शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुस्तकिल आप ड्राइव पे हैं। और लतीफ भाई, एक लतीफ भाई है मेरे, बहुत पुराने मेरे लिस्टर हैं, रेगुलर पहले डे वन से मेरे साथ हैं। और आजकल कहते हैं मैं मुस्तकिल चूंकि ड्राइव कर रहा होता हूँ, ताबिश भाई मुझे वक्त नहीं मिलता आपको मैसेज करने का, मैं रोज सुनता हूँ आपको, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाहिद अख्तर की बात हो और जमशेद चौधरी भाई का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और शमीम बानो बेगानी, आप भी पाकिस्तानी सॉन्ग को लाइक करती हैं, आपके भी नाम हुआ। नौशाद अली भाई हमारे साथ हैं बर्नले में। मलिका ने हमें लिख के भेजा कि वो मजा नहीं दुनिया के किसी कोने में, वो मजा ही नहीं दुनिया के किसी कोने में, कि जो मजा है सुबह उठ के दोबारा सोने में। राइट जनाब, आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक बार फिर से आपको बता दें कि इंडिया में अपने प्यारों को रकम पहुंचाने के लिए SBI वालों का पैगाम मुख्तलिफ ज़राए हैं इनके, जहां आज जिसके तरीके से आप रकम पहुंचा सकते हैं ऑनलाइन या फिर इनकी किसी ब्रांच में जाके या इनके मोबाइल ऐप के जरिए। योनो SBI मोबाइल ऐप आज के रेट 128.06 रुपए।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. We are Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Greater Manchester.

0: भूला सा ख्वाब लेके तुम एक बार मेरी जिंदगी में आए। फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा, शायद याद हो आपको। कजोरी जी आपको याद है। और कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं इंसान से। मैं कैसी कैसी गलतियां करता हूँ, यानी क्रिकेट का स्कोर बताने की जगह मैं पॉइंट बता रहा हूँ। सही कहा मुझे यासिर ने, ताविश भाई आपके दिमाग में पौंड ही पौंड रहते हैं। नहीं यार ऐसी बात नहीं है। रॉबिन भाई आप कहाँ हैं, ट्रेन में हैं या घर पे हैं? मैं हमेशा भूल जाता हूँ, हर हफ्ते बताते हैं आप मुझे कि दो दिन आप घर से काम करते हैं और दो दिन आप ऑफिस जाते हैं। बारिश पे बड़ी अच्छी एक बात मेरे पास यहाँ आई है कि सड़क के किनारे खड़े एक बाबा जी से मैंने कहा, सड़क के किनारे खड़े एक बाबा जी से मैंने कहा, बाबा जी बारिश कितनी हसीन होती है ना। बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ पुत्र बारिश बहुत हसीन होती है अगर मकान पक्के हो तो। ओह माय गॉड, बात संजीदा हो गई, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। सायरा जी हमें सुन रही हैं लंदन में, और लंदन में है ताहिर सिद्दीक भाई, ताहिर जावेद हमारे साथ हैं जी नेदरलैंड में, अदनान मुस्तकिल हमारे साथ हैं और रोजडेल में साथ निभा रहे हैं आप।
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly. Great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: जी हाँ जी, गुजरात टाइटंस ने कल मैच जीत लिया था और सनराइज हैदराबाद को हरा दिया था, और रन्स इन्होंने बनाए थे 168 और 5 खिलाड़ी इनके आउट हुए थे। और आज जो मैच हो रहा है तकरीबन कोई 3-3.25 घंटे के बाद ये मैच होगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कलकत्ता नाइट राइडर के दरमियान ये मैच होगा। और
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे। Remitly UK Limited इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA।
2: ये है
3: लाइका रेडियो।
2: द वेट इज नाउ ओवर। द किंग ऑफ मेलोडी कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट।
4: तुझे देखा तो ये जान।
2: वन नाइट ओनली, बैंक हॉलिडे मंडे द 25th ऑफ मई एट द आइकॉनिक रॉयल अल्बर्ट हॉल
3: विद फुल सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा बाय आरजी एकेडमी ऑफ म्यूजिक,
2: प्रेजेंटेड बाय पेपेस एंड पावर्ड बाय बेरिको फूड डिस्ट्रीब्यूशन
3: विद टीवी पार्टनर जी टीवी, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर स्प्लेंडेड हॉस्पिटैलिटी ग्रुप एंड रागासन।
2: टिकट्स अवेलेबल नाउ एट वेन्यू बॉक्स ऑफिस और टिकट मास्टर। ब्रॉट टू यू बाय रॉक ऑन म्यूजिक, यूके इवेंट्स लाइव, ट्यूटर्स वैली एजुकेशन, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Packed for the trip? Gifts? Passport?
6: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
5: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
6: Simzy?
5: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
7: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
8: T's and C's apply.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02 0 3 9 6 3 5 7 5 7. Greens by Danube, prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
12: You mean Subtel Travel?
13: Yes, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
12: एक बार आजमाइए जरूर Subtel Travel।
11: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
12: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
14: Call Subtel Travel 24 hours a day, 7 days a week. on 0161 250 1250. That's 0161 250 1250.
15: Looking to buy gold, silver or platinum bars in the UK? Visit buybullion24.co.uk for competitive prices, trusted service and secure online buying. For more details, WhatsApp on 0737522418. Start investing with confidence today at buybullion24.co.uk.
16: Ibanet Tabish on the Mid-Morning Show.
17: Like a radio.

0: मेरा मन कहने लगा, अब तू ही बता, ये बारिश, ये ठंडी हवा, ये खुशगवार मौसम, ये बारिश, ये ठंडी हवा और ये खुशगवार मौसम, अगर हम मजबूर ना होते, अगर हम मजबूर ना होते तो तेरे पास ही होते। कहते हैं चांदनी रात हो या बारिश की बूंदे, चांदनी रात हो या बारिश की बूंदे, हर मौसम में तेरी याद बरसती है। टीना जी कैसी तबीयत है आपकी, हमारे साथ हैं आप और बहुत सारे पैगामात हैं। रुखसार हमारे साथ हैं जी, रुखसार, रुखसार आज उदास हैं, क्यों भाई? अफशा जापानी गुड़िया लंदन में लेट हैं। सुमेरा वालेकुम सलाम, जीती रहिए। इमरान राणा वजाहत, अलेक्सा पे सुनते हैं हमें रोजाना। और काशिफ भाई हमारे साथ हैं जी, काशिफ भाई आश्चर्य अंडरलाइन में होते हैं रोजाना। डॉक्टर अल्ताफ अलवी ने सबको सलाम कहा, वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जरीन हमारे साथ हैं, जरीन भी आज न जाने कहाँ घूम रही है, बाहर नाश्ता हो रहा है, मौसम का मजा वैसे अच्छा लगता है, बारिश हो रही हो और आप कहीं अंदर बैठ के कुछ खा पी रहे हो।
1: Leica Radio Network, now the home of Leica Radio Greater Manchester।
0: और रोबिन भाई की पसंद किशोर कुमार और सलमा।

0: जगह जगह सवाल है, शायद यही दिल का ख्याल है। किसी ने मुझे पंजाबी में लिख के भेजा, तेरे वर्गे 110, तेरे वर्गे 110, मेरे वर्गा कोई तो दस। आया कोई नहीं जी, कोई नहीं, हाँ मगर हो जाएगा।
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Ye hai Laika Radio.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
3: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
4: यू मीन सफल ट्रेवल?
3: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
4: एक बार आजमाइए जरूर साउथ हॉल ट्रेवल.
3: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
4: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
5: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250. दैट्स 0161-250-1250.
6: दिस ईद उल अज़हा, शेयर द जॉय. No matter the distance, whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
1: Your guzzle hit plays now on Laika Radio, Greater Manchester.

और हमें अब खो के कहता है कि तुम याद आते हो, हमें अब खो के कहता है कि तुम याद आते हो, किसका हो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। भूपेंद्र सिंह और लता जी की आवाज की बहुत पुरानी फिल्मी गजल बहुत दिनों के बाद आज मेरे प्रोग्राम में

0: ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तस्वुर जाना किए हुए
1: फुर्सत के रात दिन
0: बीत गया वो लम्हा वो दिन वो बातें वो लड़कपन वो जवानी वो फुर्सत के रात दिन गर्मियों की छुट्टियां हों ठंडी ठंडी हवाएं हों और बारिशों के दिन। फिल्म का नाम था मौसम, 1975 की मूवी थी मौसम, भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर।
2: Like a radio.
0: बारिशों पे बड़ी बातें हो रही हैं आज। बारिश पे मुझे ताबीर ने लिख के भेजा कि एक शेर याद आया ताबिश, आज बड़ा बारिश का जिक्र कर रहे हैं आप, हमारे यहाँ लाहौर में तो हू का आलम है, गर्मी है, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। बारिशों पे याद आया कि वो एक दो जुमले थे कि वो जानता था बहुत पसंद है बारिशें मुझे, वो जानता था कि बहुत पसंद है बारिशें मुझे, इसीलिए शायद जाते समय मेरी आंखों को वो दे गया सावन का पता।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Currency के रेट एक बार फिर से आपको बता दें, अमेरिकन डॉलर 1.35, इंडियन रुपीज में 129.50, पाकिस्तानी रुपीज में 378.18, बांग्लादेशी टका 167.69, श्रीलंकन रुपीज 437.48 और अफगानी रुपीज 87.32।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is the LIKA Radio Network across London, Manchester and the Midlands. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is... Like a radio.
0: सोने का भाव हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 111.23 पेनिया 111 pounds 23 pence पर ग्राम, जबकि पाकिस्तानी रुपीस में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव है आज 41,050 रूपए।
2: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट, विजिट hartyhanks.com।
0: राइट जनाब, आपको बता दें कि कुमार सानू लाइव परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं। लाइक रेडियो नेटवर्क इज द कंफर्म पार्टनर ऑफ द कुमार सानू लाइव कॉन्सर्ट एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अल्बर्ट हॉल ऑन बैंक हॉलिडे में मंडे 25 मई को ये होगा, लिहाजा आप अपनी टिकट बुक करा लीजिए और अपने सामने लाइव करता हुआ परफॉर्म करता हुआ आप इन्हें देख सकेंगे।
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Daniel, prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 02 08 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
3: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
5: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
3: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
6: Need a car the halal way? Look no further. Halal Car Finance is now available in the UK with Ayan. No interest, no hidden fees, no compromise. Apply today at ayan.co.uk. Ayan, drive with Baraka. Subject to status checks. Representative APR 10.9%. This rate reflects Ayan's rental charges. We do not charge interest.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161 250 822 or sales at leicamedia.co.uk. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: वेलकम। इस हफ्ते के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं कौन वाला? जी हाँ, माधुरी दीक्षित जी। ये गाना हमें कल ही नोट करा दिया था भाई। इसी को कहते हैं पहले आइए पहले फाइए। फरीद भाई, आपके नाम हुआ क्योंकि आपकी पसंद थी, आपने कल ही हमें नोट करा दिया था ये गाना।

जी हाँ, शायर और शायरी और दीवाना और दीवानी, मुजक्कर और मोनस, मेल और फीमेल, दुनिया का सोशल एनिमल, इंसान हजरत इंसान। रॉबिन भाई एंजॉय कर रहे हैं ये गाना, आपके भी नाम हुआ। और न्यूयॉर्क में ट्रेन का सफर, ओह माय गॉड, आई लव इट। अच्छा भाई, कहीं से पिज्जा की पिक्चर आई है, पिज्जा विद चिप्स। अच्छा है वैसे, अच्छा है, मौसम है तो पिज्जा भी खाना चाहिए कभी कभी।

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK brand.
1: Right, जनाब, इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाने के लिए आज के रेट दे रहे हैं 128.06 इंडियन रुपीस में, और कहते हैं कि अगर आप मोबाइल ऐप के जरिए रकम पहुंचाएंगे तो आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे और अच्छा रेट भी मिलेगा.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Like a radio.
1: बात अधूरी रह गई थी. बात मैंने शुरू की थी ना कुछ देर पहले कि हमें अब खोक के कहता है कि मुझे तुम याद आते हो. मुझे खो के कहता है कि तुम याद आते हो. किसी का हो के मिलॉर्ड, गौर कीजिएगा जरा, पॉइंट को नोट किया जाए. हमें खो के कहता है तुम मुझे याद आते हो, और किसी का हो के कहता है कि तुम मुझे याद आते हो. और समंदर था तो जोर शोर से लहरें बहाता था. समंदर था तो जोरों शोर से लहरें बहाता था. अब कतरा होके कहता है कि मुझे तुम याद आते हो. और बयां करते हो जो हाल दिल, यूं ही मुस्करा देता. बयां करते जो हाल दिल तो यूं ही मुस्करा देता. वही अब रो के कहता है कि मुझे तुम याद आते हो. एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था.
0: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
1: अदाकार रंगीला और फिल्म का नाम मेरी जिंदगी है नगमा.

0: प्यार हुआ।
1: हुस्न की देवी हो या ना हो लेकिन प्यार तो हो ही जाता है। और फिर अपना
0: एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था है, प्यार हुआ था।
1: Like a right। और फिर अपना सनम आपको हुस्न का देवता ही तो लगता है। मैसेजेस आने शुरू हो गए कि अच्छा भाई फिर मैं चलूं, ये तो मेरी लाइन है। रॉबिन भाई का मैसेज आया, लंबा तड़ंगा मैसेज, कह रहे मैं सुन रहा हूं लेकिन मैं ऑफिस पहुंच गया हूं। और आप कह रहे हैं कि मैं कल से जाऊंगा जरा 12 दिन के लिए कनाडा, लेकिन बहरहाल कोशिश करूंगा आपको सुनने की। कोशिश करनी पड़ेगी रॉबिन भाई, कनाडा जाएं या कहीं भी जाएं आप। जमशेद भाई झूम उठे, रंगीला हुस्न की देवी। बर्नले से नौशाद अली भाई कहते हैं, ताबिश भाई आई लव दिस सॉन्ग। रियली नौशाद अली भाई, आपको भी पाकिस्तानी क्लासिक सॉन्ग पसंद है? बड़ी बात है भाई, बहुत खुश हुआ। अच्छा भाई, ताबीर ने इजाजत मांगी है। हाँ जी, दी आपको इजाजत हमने। गुलाम अली भाई पिज्जा खा रहे हैं, खाते रहिए। बरी में निगत और अमन और साथ साथ लेला और राहिला जी हमारे साथ हैं। और राहिम कहते हैं क्या बात है? वो मुझे याद आ जाता है कि शो में मथन चक्रवर्ती बैठते हैं, वहां पे मेंटर बन के बैठते हैं वहां हॉट सीट पे, और कहते हैं क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कुछ याद आया आपको? समीर मिर्ची वाला ने सबको सलाम कहा भाई, बहुत शुक्रिया समीर मिर्ची वाला। मिर्चे कम नमक ज्यादा।
2: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: बस जनाब, कोई तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट के बाद मेरे बाद यहाँ होंगी रुबीना खान, आपको बताएंगी, इसकी अपडेट देंगी, इसका स्कोर बताएंगी। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर के दरमियान ये मैच होगा।
2: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. This is Leica Radio.
3: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
4: Atif Aslam live in the UK.
3: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
4: Book your tickets now at AXS.
3: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
6: यू मीन सफल ट्रेवल?
5: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
6: एक बार आजमाइए जरूर सफल ट्रेवल।
5: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
6: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
7: कॉल सफल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250। दैट्स 0161 250 1250।
8: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
9: Want magic in every bite? Grab Hira Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hira Foods, king in quality, king in taste.
2: Bradford Mellor, 1st and 2nd of August. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: आशीष दर्द लगा बैठे, लबिया यार गवा बैठे, हाय हाय हाय। किसी का दिल तोड़ना इतना आसान होता है, लेकिन किसी के दिल में हमेशा जगह बनाकर रहना बहुत मुश्किल काम होता है यारो। मुझे इजाजत है, फिर मैं जाऊं। कहते हैं कुछ लोग मुझे अपना बनाकर कहते थे, साहब कुछ लोग मुझे अपना बनाकर करते थे साहब, सच में वो लोग सिर्फ कहा ही करते थे। बहुत देर के बाद हमें ज्वाइन किया, सब मसरूफ रहे। हमजा आपने ज्वाइन किया, आपको अच्छा लगा ये गीत। बहुत से साथी, बहुत से मेरे लिस्टर, कोई सॉन्ग, कोई गीत, कोई गजल ऐसी जरूर होती है कि जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देती है। लिहाजा कोई कहीं नहीं जाएगा, मेरे बाद रुबीना खान है, उनका साथ आपको निभाना होगा। उज़्मा जी लंदन में आपने खुदा हाफिज कहा, थैंक यू ताबिर, आपका शुक्रिया। रॉबिन भाई, कामरान भाई, आप सबकी दुआओं के साए में इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल जमेरात भरी मुराद। पंजाबी सॉन्ग आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा। मौसम अजीब और गरीब है यार, मुझे पसंद नहीं है वैसे इस हफ्ते का मौसम, मुझे पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद हो तो फिर कल बताइएगा जरूर, इंशाल्लाह। सी यू टुमारो, फी अमान अल्लाह, ते खुदा पामान।
1: स्प्रिंग इनटू द सनशाइन ऑन लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: बैक टू बैक ट्रैक्स आपने सुने जाने सारा अरिजीत सिंह की आवाज में और तेरे सिवा एश किंग और रनीसा दास की आवाज में आपने ये गीत सुने जहाँ कहीं आप हमारा साथ निभा रहे हैं। आप सुन रहे हैं लाइक और रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर और मैं हूँ रुबीना खान द मैगजीन शो लेकर आपके साथ मौजूद। आज भी फुली जैम पैक प्रोग्राम है जी। आज जैसे मौसम में भी बहुत कुछ शामिल है ना, कहीं बारिश भी है, बादल भी हैं और सूरज भी है। यहाँ पर भी जी गीत भी होंगे, बातें भी होंगी, इन्फॉर्मेशन भी होगी, एंटरटेनमेंट भी होगी। और आज दो पहले दिन यानी मंडे एंड ट्यूसडे तो शॉर्ट स्टोरी होती है थर्ड आवर में कहीं जाकर, लेकिन आज थर्ड आवर में आपको मिलेगा कोट ऑफ द डे। कोट्स जो होती हैं वो लाइफ चेंजिंग होती हैं, अगर किसी वक्त जरूरत पड़े इंसान को सोचने की तो आप मदद लेते हैं विजडम की, कहीं ना कहीं से सोच लेते हैं, तो कोट्स उनका बड़ा अच्छा सोर्स है। हमारे प्रोग्राम के फोर डेज में से दो दिन शॉर्ट स्टोरी और दो दिन कोट्स होती हैं प्रोग्राम के तीसरे आवर में। बहुत से अच्छे गीत, बहुत सी अच्छी बातें, बहुत से खबरें, खबर पर नजर भी होती है और आपके मैसेजेस 07703403020 पर हमें मिलते हैं। और अभी चूंकि हम लाइक रेडियो से एक हैंगआउट इंस्टाग्राम पर अभी एक लाइव शो करके मैं आई हूँ, तो अभी मैं उसी तासर में हूँ। मैसा के साथ बात करके बहुत मज़ा आया, जो संडे शो करती हैं 7 to 10 PM तक। जबरदस्त जी, थैंक यू मैसा, थैंक यू लाइक रेडियो।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स। Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: The Magazine Show with Rubina Khan. Leica Radio. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
3: Are we there yet?
4: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
3: Relax, I've booked the Uber already.
4: How? My roaming isn't even working yet.
3: I switched to Simsy before we left London.
4: Simsy? Since when are you the tech expert?
3: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ

0: तारिक हलाल। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में तारिक हलाल फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आज ही राब्ता कीजिए tarikhalal.com।
1: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर में हूँ रुबीना खान और अभी कुछ देर पहले हैंग आउट इंस्टा लाइव लाइक पे हमने बातचीत बहुत जबरदस्त सी यानी एक फॉर्मल बातचीत नहीं थी लेकिन गपशप के माहौल में बहुत जबरदस्त अपनी कलीग मैसा से बातचीत की. म्यूजिक पर भी हमारी बात हो रही थी तो म्यूजिक तो जाहिर है हम सबकी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. बहुत से गानों को हम अपनी जिंदगी से रिलेट कर लेते हैं और करते हैं. कुछ गाने हमने कुछ खास वक्त में सुने होते हैं, मुझे हमें वो वक्त याद आ जाता है. मुझे कहने लगी थी और मुझे भी ऐसा ही होता है. मैं कोई आप लोगों से अलग तो थोड़ी हूँ. जैसा आप लोग सोचते हैं, जैसा हर इंसान सोचता है, उसी तरह से एक प्रेजेंटर भी सोचता है, उसको भी वही कुछ याद आ रहा होता है. हर गाने के लिए ये नहीं होता, कुछ कुछ सॉन्ग्स के लिए होता है. वो चाहे आपने कभी भी सुने हो, आपको याद आ जाते हैं. और मुझे कभी भूलता नहीं है कि आप लोग मुझे मैसेज करते हैं तो मैं उन मैसेजेस को एक्नॉलेज करके बड़े प्यार से प्रोग्राम में शामिल करूं. जहाँ कोई अच्छी बात होती है मैं उसको भी कहती हूँ. आज फरजाना नसीब आपने मैसेज किया है, आज आपने फूलों की पत्तियों से गुजारा किया है. वो मोहब्बत भरा सलाम नहीं भेजा जी तुसी, क्यों जी, को टाइम नहीं था. देखा ना कैसी बुरी बात है कि फूल क्या कम है जो मैं ऐसा कह रही हूँ. मोहब्बत भरा सलाम नहीं भेजा. ओहो हो, शिकवे शिकवे हैं, शिकायतें हैं, चाहत है. एसपी पे सजाद आपका भी मैसेज है, शुक्रिया. आपका भी सुफियान आपका मैसेज है, ढेर मेहरबानी जी. म्यूजिक समझ दिए हैं खाना आपने, तो ये तो हो गया जी नॉर्मल फॉर्मल. और तारिक आपको भी भूल गई, नहीं भूलना चाहिए कभी भी कि रुबीना खान कैफा हालकुम लिखा. शुक्रिया बहुत बहुत आपका. और अब
1: currency updates are sponsored by Lemfi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: £1 का एक्सचेंज रेट आपको US डॉलर्स में 1.35 डॉलर्स देगा. इंडियन रुपीज मिलेंगे £1 के एक्सचेंज में 129.50, पाकिस्तानी 378.18, बांग्ला 167.69, श्रीलंकन 437.48, अफगानी 87.32 अफगानीज.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio. Formerly known as Asian Sound Radio. A LIKA Radio classic. Plays now.
0: क्लासिक के लिए तो आप हमेशा रेडी हैं. बॉलीवुड क्लासिक आपको हमेशा अच्छे लगते हैं. तो ये वो गीत है जो मुझे पसंद है. लता मंगेशकर की आवाज है, फकीरा फिल्म का नाम है, म्यूजिक भी, माहौल भी, ऑल टुगेदर जबरदस्त.

0: लता मंगेशकर की आवाज। रोमांटिक सॉन्ग
1: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers. इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.
0: अभी जो गीत सुनेंगे बागी 4 2025 की फिल्म से है, जोश बार और पेम्पा टेंडन की आवाजें हैं. गुजारा नहीं, ये भी तो वही चीज है जो पहले गीत में थी.

0: लास्ट आवर क्विकली गुजर गया है, गुजर रहा है, अभी 15 मिनट बाकी है। उदित नारायण, साधना सरगम की आवाजें फॉर द फिल्म बागी, और अब आपको लेके चलूंगी मसूद राणा की आवाज की तरह।
1: Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: So, money transfer करना चाहते हैं, send करना चाहते हैं India, तो आपको competitive rates मिलेंगे. आज का exchange rate है 129.50 और आपको बता दें कि Yono SBI UK via branch online or by using the Yono SBI mobile app के जरिए आप money transfer कर सकते हैं.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Radio.
3: Laika Radio.
0: India Cricket Score Updates. Brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England Cricket.
1: क्रिकेट का 57th मैच जो है वो इस वक्त खेला जाएगा कुछ ही देर में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान. मैच के शुरू होने में अभी कुछ वक्त है, एक घंटा और तकरीबन 10 मिनट बाद ये मैच शुरू होगा.
0: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस. डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे. रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA. The Magazine Show with Robina Khan.
4: Laika Radio.
5: दीप काम मिलो,
6: की काम
5: दीप काम
6: गीप काम
5: बोल बोल
6: के जाम वास्ता पूरी करता है. साला कुल का दीपक समझे थे, फुल जली निकला. रानी
7: तू पर रांदे को संभालनी. 15th मई को प्रजापति पांडे लेकर आ रहे हैं फुल ऑन कंफ्यूजन और डबल धमाका. कौन पत्नी कौन वो, सवाल बहुत है, आंसर्स और भी एंटरटेनिंग. पति पत्नी और वो दो परिवार के साथ देखिए 15th मई से सिनेमाज में.
8: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
12: You mean Subtle Travel?
11: Yes. देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
12: एक बार आजमाइए जरूर Subtle Travel.
11: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
12: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
13: Call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161-250-1250. That's 0161-250-1250.
14: This Eid al-Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
15: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्राई एम शेप में है वो बचपन की याद.
16: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्राई एम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यमियस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट.
15: जेमिन फ्राई एम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
17: रॉयल अनाउंसमेंट बाय रॉयल चाय. चाय इज लव्ड बाय ऑल एंड सो इज कॉफी. हियर इज प्रेजेंटिंग अ ब्रांड न्यू कॉफी लाटे in three different and delectable concoctions. Enjoy the royal blend and aroma of coffee in masala, cardamom and karak flavors. Taste the coffee latte with a quirk by Royal Chai, now available at all major retailers.
0: New News headlines up next. Leica Radio, Greater Manchester.
18: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना जब आप ऋतु के साथ सुनेंगे क्लासिक्स इन द ऋतु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: Robina Khan. Now every Monday to Thursday at 1 p.m. on Leica Radio Greater Manchester. Leica Radio.
1: लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर सेकंड आवर के पहले दो गीत आपने सुने टुकुर टुकुर अरिजीत सिंह की आवाज थी और दिलवाले फिल्म का नाम था 2015 की फिल्म से इस गीत को हमने आपके लिए प्ले किया और अभी राहत फतेह अली खान की आवाज सुन रहे थे लग जा गले भूमि फिल्म का नाम और 2017 की ये फिल्म थी सो ये तो इंट्रोडक्शन था बैक टू बैक सॉन्ग्स का उम्मीद कहते हैं आपने एंजॉय किया होगा बहुत से खूबसूरत सॉन्ग बहुत सी बातें खबर पर नजर और कोट ऑफ द डे आज के प्रोग्राम का खास फॉर्मेट रहेगा और उसके अलावा हेयर एंड देयर ब्यूटीफुल ट्रैक आपसे बातें और क्या क्या कुछ नहीं अभी एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग के तरफ लेके जा रही हूँ मैं आपको वो आप ध्यान से सुनिए जैसे टीचर्स कहती है ना दिल लगा के काम करें काम पर ध्यान दे इधर उधर नहीं देखना है सीधा काम करना है समझ के करना है मैं एग्जाम लूंगी वैसे मैं कभी टीचर रही नहीं हूँ लाइफ में नहीं एक बात तो है इतना हजार बार ये तो नहीं हो सकता कि कभी कोई टीचर ना रहा हो मैंने एक मरतबा एक कॉलेज के ज़माने में एक ऐसा सब्जेक्ट लिया था उसका नाम एजुकेशन नाम ही एजुकेशन था और उसमें आपको प्रैक्टिस यानी एग्जाम का पार्ट था कि आपने टीचिंग करनी होती थी लेकिन वो ऐसे ही कोई एक दिन की टीचिंग लेकिन आजकल तो हर कोई टीचर है सोशल मीडिया पर आपको इतनी इतनी बातें बताते हैं सिखाते हैं एवरीवेयर टीचर्स क्या ख्याल है आपका चलिए गाना सुनते हैं
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स

0: जरूरी है जी इस बात को मेक श्योर करना कि मौसम की तरह तुम भी बदलने का नहीं जी
1: Track of the Hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. The Magazine Show with Robina Khan. Like a
2: radio. वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
3: दिस ईद उल अज़हा शेयर द जॉय No matter the distance, whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
4: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल
5: यू मीन सॉफ्टल ट्रेवल
4: यस देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर
5: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टल ट्रेवल
4: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए
5: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए
6: कॉल सॉफ्टल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250 दैट्स 0161-250-1250
7: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635. 757 Greens by Danube Prime Location
7: High Appreciation
8: in Dubai
9: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton with grills fired up and ready to serve you flame grilled Piri Piri favorites Derby Street in Bolton Pepe's Piri Piri definitely worth a visit
1: This is the Leica Radio Network You heard The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0161 250 8222 or sales@leicamedia.co.uk. This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th.

0: कुमार सानू की आवाज़ आप सुन रहे थे कुरुक्षेत्रा फिल्म सन 2000 की फिल्म से इस गीत को हमने लिया। आज भी उतना ही धड़कता है दिल इस गीत में भी और सबके दिलों में भी।
1: ये है Like a Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: करेंसी एक्सचेंज रेट आपको बता दें, 1 pound के एक्सचेंज में आपको US डॉलर मिलेंगे 1.35 dollars, इंडियन रुपीज मिलेंगे 129.50, पाकिस्तानी रुपीज 378.18 और बांग्लादेशी 167.69, श्रीलंकन 437.48, अफगानी 87.32 अफगानीज।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. You're listening to LIKA Radio Greater Manchester on 963 AM and 1377 AM. Previously known as Asian Sound Radio. LIKA.

0: बाज़ुगत गाना इतना इमोशनल, इतना सेंटिमेंटल होता है और खूबसूरत होता है, दिल के करीब होता है, लेकिन फिल्म का नाम पढ़कर हंसी आ जाती है। काम चोर फिल्म का नाम है, 1982 की फिल्म।
1: खबर पर नजर विथ रुबीना खान,
0: लाइक हर रेडियो। और आज की खबर, आज का कैलेंडर है और वो ये है कि 13th मई को आज के दिन में सेलिब्रेट किया जाता है ट्रेड डे, फेयर ट्रेड डे। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। एक तस्वीर है जिसमें एक तराजू है और उसमें कुछ बैरीज हैं और साथ में कॉइन्स हैं। फेयर ट्रेड डे का मतलब ये है कि मजदूर लेबरर जो है काम करते हैं तो उनको जो वेजेस मिलनी चाहिए वो आज के दिन इस बात को मेक श्योर किया जाता है कि वो फेयर हों। अभी भी आज की दुनिया में भी देखा जाए तो बहुत सी जगहों पर जो लेबर हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब लोग हैं, बहुत ही प्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन उनको वेजेस अच्छी नहीं मिल रही होती। और ये बहुत बड़ा एक डायलेमा है कि इस तरह से अभी भी हो रहा है, यानी कि पेनफुली लो वेजेस उनको मिल रही होती हैं। तो आज के दिन में ये एक बड़ी अच्छी खबर भी है और एक लिहाज से को ये कैंपेन भी है कि कोशिश यही कि हर जगह फेयर ट्रेड हो और लोगों को उनकी मेहनत का पूरा जो सिला है वो मिले। और जब ये बात चली है तो मैं आपको ये भी बता दूं, आजकल के दौर में हम कहते हैं ना कि बहुत ये अच्छा दौर है इस लिहाज से कि हम बड़े सुकून से रहते हैं और ये मुतालबा भी कर सकते हैं कि फेयर ट्रेड होनी चाहिए। एक ज़माना वो था जब बार्टर यानी चीज़ों के बदले में कमोडिटी ही जो है वो मनी होती थी। अगर किसी को गंदम चाहिए, वीट चाहिए तो उसके एक्सचेंज में ग्रेन्स मिलते थे। इवन रोम में सोल्जर्स को सैलरियम यानी नमक की सैलरी मिलती थी। बहुत अजीब तरीके से दुनिया गुजरी है और हम बड़े ही मॉडर्न वर्ल्ड में इस लिहाज से सुकून में हैं। मतलब ग्रेन, स्पाइसेस, मेटल एक्सचेंज होती थी और फिर कहीं 600 BC में जाकर मेटल के बाद कॉइन्स और कॉपर का जमाना आया।
1: द पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइकर रेडियो मोबाइल ऐप। Listen live and listen back to your favorite shows.
0: बहुत दिनों से नहीं सुना था ये गीत, सोचा कि आज हो जाए। सनू नहर वाले पुलते बुला के मलिका तरन्नुम नूर जहां की आवाज, क्वीन ऑफ मेलोडी, देखो रे माही किथे रह गया। ट्रैफिक विच

0: station sound for the Northwest. This is Leica Radio, Greater Manchester. Leica Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: आज का गोल्ड रेट है 111.23 पाउंड्स पर ग्राम.
0: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Leica Radio.
3: ये है
2: Leica Radio.
0: This is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio.
2: Leica Radio.
0: Leica Extra Podcast Update.
1: Leica Extra Podcast 15th एपिसोड जो है वो रिलीज हो चुकी है और ये होस्टेड है जी डोनी ब्रास्को के, ने इसको होस्ट किया है और टाइटल इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, वेडिंग्स एंड बियॉन्ड. इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आजकल के हवाले से कि क्या शादी जो है आजकल एक सोशल मीडिया के लिए इतना तरद्दुद किया जाता है कि ताकि सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा सके. और इसमें काजल भी जो है वो पार्टिसिपेट करी है, Leica गोल्ड उन्होंने भी इसमें अपीयरेंस दी है. सो बहुत सी बातें हैं, आप जरूर सुनिए. और ये जो पॉडकास्ट है ये अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीम लाइन्स.
0: Leica Extra is here. The magazine show with Robina Khan.
2: Leica Radio.
3: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
4: Atif Aslam live in the UK.
3: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
4: Book your tickets now at AXS.
3: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
4: Exclusive radio partner Leica Radio.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
6: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जेमिन फूड्स.
7: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट.
6: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जेमिन फूड्स.
5: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care, available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
8: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free, butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
9: Hi, this is Johnny Abraham.
10: Hi, I am Deepika Padukone.
11: Hi, this is Papon.
12: Hi, this is Ehsan from Shankar Ehsan Loy.
13: Hi, I am Nadeem Saifi from the Nadeem Shravan Jodi.
14: Hi, Sankit Tiwari.
15: Hi, this is Salim.
16: Hi, this is Suleiman from Salim Suleiman. Keep listening to us.
2: Leica Radio.
0: Leica Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel 2026.
1: तो अगर आप हॉलीडे बुक करना चाहते हैं तो साउथ हॉल को कॉन्टेक्ट कीजिए.
0: 90s throwback plays now.
2: Leica

0: Maker Radio.
1: गीत की गायकी की कोई रिक्वायरमेंट होती है तो लफ्जों को जिधर जिधर बड़ा ही प्यारा, उधर उधर खूबसूरत सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज है, साजन का घर फिल्म का नाम था। प्रोग्राम में गीत भी हैं, बातें भी हैं और ऑल टुगेदर सभी कुछ है। और चूंकि दोपहर का ही वक्त है, कहना तो यही चाहिए, वरना यहाँ पर यूके में तो 12 बजे लोगों के जो लंच बॉक्स है खुल जाते हैं और 12 बजे वो खाना खा लेते हैं। लेकिन हम यही कहते हैं, जिसने सुबह 6 या 7 बजे नाश्ता किया होगा वही 12 बजे करेगा। अगर 12 बजे ही आपने कुछ खाया है, यानी फर्स्ट जो भी कुछ खाना पीना है वो 12 बजे शुरू हुआ है, तो फिर 12 बजे तो फिर उसको ब्रेकफास्ट ही बोलेंगे। लेकिन इस वक्त जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि छोटी से छोटी ये जो तब्दीली है या अच्छाई की तरफ कोई कदम है, सेहत के हवाले से बात हो रही है, तो उसमें एक छोटी सी बात को भी वो सेहत के लिए बेहतर हो सकती है। इसको कभी नहीं सोचना चाहिए अच्छा कि इतने सी चीज़ से क्या हो जाएगा। अगर हमारा दिल चाह रहा है कि हम मिसाल के तौर पर हम मीठा खाते हैं और 5-6 या 4 चम्मच से आपका मीठे की जो सेटिस्फेक्शन है, क्रेविंग ख़त्म हो जाती है, तो उसको प्लेट को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो सामने पड़ा है उसको ख़त्म कर कर ही जो है ना दम लेना है। ये इतनी छोटी छोटी बातों से ही सेहत की तरफ बिग बिग जो हैं स्टेप्स हम उठा सकते हैं। और यही बात एक नई तहकीक में है कि रोज़ाना खुराक की मामूली सी जो अगर आप कमी करते हैं, जिससे वज़न भी कम होता है, कैलोरीज भी कम होती हैं, वो आपकी सेहत को बेहतर बना सकती है, शुगर कंट्रोल कर सकती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकती है, बल्कि आपके दिल की सेहत को भी बेहतर बना सकती है। तो छोटी छोटी बातों को जाने ना दे कि चलो मजे कर लेते हैं, लेकिन फिर सेहत बहुत जरूरी चीज है।
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: सो आपको बता दें जी कि 1 pound इन ब्रिटिश स्टर्लिंग आज आपको देगा 129.50 इंडियन रुपीज़। और इंडिया अगर रकम भेजना चाहते हैं, मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप योनो SBI बाय ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए मनी सेंड कर सकते हैं।
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई। Leica Radio. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: आज रायपुर में 47th मैच होना है, क्रिकेट मैच होना है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोरा और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान, और मैच येट टू बिगिन। और अगर आपको गुजरात टाइटन यानी कल का खेल के बारे में जाना है, तो गुजरात टाइटन ने कल विन किया था बाय 82 रन्स, लेकिन अभी जो मैच है उसके शुरू होने में कुछ देर है। जो ही शुरू होता है, स्कोर सामने आने शुरू होते हैं, तो हम आपको बताते हैं।
0: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a
3: सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
4: यू मीन सबटल ट्रेवल?
3: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर,
4: एक बार आजमाइए जरूर सबटल ट्रेवल।
3: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
4: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
5: कॉल सबटल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250. दैट्स 0161-250-1250.
6: Location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Ace Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
9: Need a car the halal way? Look no further. Halal Car Finance is now available in the UK with Ayan. No interest, no hidden fees, no compromise. Apply today at ayan.co.uk. Ayan. Drive with Baraka. Subject to status checks. Representative APR 10.9%. This rate reflects Ayan's rental charges. We do not charge interest.
10: Sade Daswe Guru Govind Singh Ji Maharaj da Pavitr Janam Sthan Takhat Shri Hariminder Ji Patna Sahib de Live Darshan de. सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही.
11: Want magic in every bite? Grab Hira Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hira Foods, king in quality, king in taste.
0: Another huge giveaway is coming. My

0: ਵੇਚੀ ਵੀਡ
1: प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा और पहले दो गीत आप सुन रहे थे यो यो हनी सिंह की आवाज में। कॉकटेल फिल्म का नाम 2012 की फिल्म थी, उससे पहले

आज है ट्यूसडे, ना आज वेंसडे है. शुक्र है सामने बिल्कुल नजर आ गया मुझे, वरना आपके भी कई काम गड़बड़ हो सकते थे ट्यूसडे समझकर. नहीं जी, आज वेंसडे है, कल थर्सडे. वही बात है ना कि वक्त बड़ी जल्दी गुजरता है. मंडे शुरू होता है और आप सोच रहे होते हैं कि चलें, अब ये आपके पास वीक है, वो वीक जो है उसको कहीं पर लगे होते हैं विंग्स, फड़फड़ाता हुआ उठ जाता है. Tasty track of the

0: चाय मिल जाए तो आए हाय मजा आ जाए।
1: अरे समझो हो गया, रॉयल चाय है ना, अब भी बन जाएगी। सिर्फ पैकेट खोलो और गर्म पानी में घोल लो, चाय तैयार, वो भी रॉयल टेस्ट के साथ। रॉयल चाय, झटपट, कहीं भी, कभी भी।
2: Looking to buy gold, silver or platinum bars in the UK? Visit buybullion24.co.uk for competitive prices, trusted service and secure online buying. For more details, WhatsApp on 073-7522-4418. Start investing with confidence today at buybullion24.co.uk.
3: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
4: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवरटाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आवर रेडियो सेल्स ऑन 0161-250-8222 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
3: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. चाहे यूरोप हो या दुनिया का दूसरा कोना, हर ट्रिप फील होता है द Star Tours Experience. Visit startours.co.uk।

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: करेंसी एक्सचेंज रेट आप तक पहुंचा दें. आज आपको 1 पाउंड के एक्सचेंज में यूएस डॉलर मिलेंगे 1.35 डॉलर्स, इंडियन रुपीस 129.50, पाकिस्तानी 378.18 पाकिस्तानी रुपीस, बांग्लादेशी टकास 167.69, श्रीलंकन 437.48, अफगानी 87.32 अफगानीज.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio. LIKA Radio. A LIKA Radio classic. Plays now.
1: अभी जो गीत सुनेंगे आप मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं इसमें, और फिल्म का नाम है नागिन. 1976 की ये फिल्म है. और गीत आपके सुनने के लिए हाजिर है जी, पेश है

0: ये होते हैं जी क्लासिक सॉन्ग्स।
1: रबीना खान Quote of the day with Rabina Khan.
0: Radio. जी अभी कुछ देर पहले वो बस आप ये समझ लीजिए कि एक टीजर था और कोट ऑफ द डे अभी आ रही है और ये बात है जिंदगी के सफर के बारे में कि जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ जीत नहीं होती है, हार भी होती है और हार उसकी होती है जो कोशिश करना जो कोशिश करता है और कोशिश करते रहना चाहिए, उससे थकना नहीं चाहिए क्योंकि कोई थकने से हार नहीं जाता है, लिहाजा कोशिश जारी रखें तो कहीं ना कहीं इंसान पहुंच ही जाता है और जो हार होती है या जो डिफीट होती है वो हार या डिफीट नहीं होती है, आप उसमें से कोई ना कोई सबक जो है लेसन लर्न करते ही हैं। पूरे दिन में आप देख लें कि आपको आप कहें कि आज तो आम सा दिन था, क्या था आज तो कोई ख़ास बात ही नहीं हुई, कोई ख़ास काम ही नहीं किया, तो ऐसा भी नहीं होता। अगर आप रात को सोचें तो कहीं ना कहीं कोई ख़ास नुक्ता आपको मिल ही जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारा दिन में आपने कोई कंस्ट्रक्टिव या प्रोडक्टिव काम ना किया हो या ऐसा काम ना किया हो कि जिससे आपका दिल खुश हुआ हो। होता है लेकिन इन जनरल हम कहते हैं लो जी कि आधा दिन गुजर गया कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं है। सो अपने दिन को भी अपने जहन को भी और अपने आप को भी खुश मुतमईन रखें, जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी करते जाएं, बाकी की फिक्र नहीं करनी, बाद में फिर छोड़ दें जो होता है या नहीं होता उसमें ना आपको परेशान होना चाहिए, लेकिन कोशिश करना बहुत ही जरूरी है, इसको नहीं छोड़ना।
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: जी आपको गोल्ड रेट बता देती हूँ, अभी आज का गोल्ड रेट है 111.23 पाउंड्स पर ग्राम।
1: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट, विजिट hartihanks.com।
2: ये है
1: Leica Radio. The Magazine Show with Rabina Khan.
2: Leica Radio.
3: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
4: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
5: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
6: Badhiya service se mala mal travel aur bachat karane mein bemisal travel.
4: You mean subtle travel?
6: Yes, desh videsh mein dur dur tak mashhoor.
4: Ek baar aazmaiye zarur Southall Travel.
6: Saaton din kisi bhi waqt phone milaiye aur chahe ghar par ticket deliver karaiye.
4: Phir duniya mein kahin bhi ghoom kar aaiye.
7: Call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161 250 1250. That's 0161 250 1250.
8: Location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
11: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
10: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
11: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
12: Kaise Tiko, right? Neeraj here. I present the Leica Radio Network Charge Show every Saturday, going out on Leica Radio Greater London, Leica Radio Greater Manchester, and Leica Radio Midlands from 4 till 7, and on Sunday with the Sunday Showdown on Leica Radio Greater London. Join me at the week.

0: सही बात है जी, मस्त मस्त मुझे अच्छा लगा है गाना, दिल लगाना मना था वहीं लगाना है। ब्यूटीफुल शेक
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: Madhuri Dixit for Big Shrice, Artist of

0: जाने से पहले एक पॉइंट तो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ. पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री हो या इंडिया की शोबिज इंडस्ट्री हो, वहाँ पर ये एक कॉमन डिबेट रहती है कि जो हीरोज होते हैं, मेल एक्टर्स होते हैं, वो ज़्यादा देर तक स्क्रीन पर रहते हैं, एज अ हीरो प्ले करते हैं. लेडीज़ के लिए ये सहूलत मौजूद नहीं है, ख्वाह वो कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो. अगर हम बात करना चाहें सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की, तो वहाँ तो ये बात हम सब देखते हैं और समझते हैं कि ऐसा ही है. यानी कि जो 50 इयर्स के भी लोग हैं वो जेंजीज का किरदार कर रहे हैं, और ये दोनों मुल्कों के अंदर है. हमारे यहाँ ये कुछ साइकी है कि औरतों के लिए बहुत कम टाइम होता है एज अ हीरोइन काम करने के लिए. बहरहाल अवेयरनेस बढ़ी है, लेट्स सी क्या होता है. खूबसूरत गीत मैंने आपको सुनवाया है, जिससे सुनकर मुझको भी कुछ ऐसा ही लगा कि जैसे माधुरी अभी काम करें और कौन कौन ना काम करे. हमजा आपने मैसेज किया है, अभी कोई आप मैसेज कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वल्लाह बड़ी बात है जी. चौधरी अशरफ आपका आपने मैसेज किया, जमशेद आपने कहा नाइश रुबीना जी खुश रहें, आप लोग भी खुश रहें जी, जो लोग हमारे साथ निभाते हैं.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: सर आपको बता दें कि आज भी अगर आप मनी सेंड करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं इंडिया के लिए, तो आपको कम्पेटिटिव रेट मिलेगा. आज का रेट 129.50 है. और आप भेजना चाहें मनी तो योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए वाया ब्रांच या ऑनलाइन मनी सेंड कर सकते हैं.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio. India Cricket Score Updates, brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly. Great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England Cricket.
0: तो आपको बता दें कि IPL 2026 का मैच, जो 47th मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दरमियान कोलकाता राइडर्स एंड एक्चुअली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान होना था, वो बारिश की वजह से इस वक्त डिले हुआ है. जब मैच स्टार्ट होगा तो तब आप तक स्कोर पहुंचेगा.
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस. डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. The Magazine Show with Robina Khan.
2: Leica Radio.
3: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
4: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
4: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
5: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
6: This Eid ul Adha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
7: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 0200. 01484-9963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: High Appreciation
9: in Dubai.
10: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
11: You mean Subtle Travel?
10: Yes, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
11: एक बार आजमाइए जरूर Subtle Travel.
10: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
11: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
12: Call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161-250-1250. That's 0161-250-1250.
13: Want magic in every bite? Grab Hira Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hira Foods, king in quality, king in taste.
1: Bradford Mellor, 1st and 2nd of August. Exclusive radio partner, Leica Radio. Rizkan, next with Drive.
14: Leica.

का नाम है गरम मसाला। फिर मुझे हंसी इस बात पे आ जाती है कि इतना मजे का सॉन्ग, फलक देखूं, जमी देखूं, क्या क्या ना देखूं। बहरहाल इसी नोट पर मैं आपसे इजाजत चाहती हूं, और वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे शुक्रिया के मैसेज भेजे हैं, आप सबका भी वापस शुक्रिया। और रिज़ खान यहाँ स्टूडियो में है, अगले 3 घंटे के लिए रिज़ खान का साथ निभाइए। मैं आपसे कल मिलूंगी, उस वक्त तक के लिए रुबीना खान को इजाजत, बाय फॉर नाउ।

0: Satco microwave food containers.
1: अरे चंचल कुमारी, साइको ऑनर शहर इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, लॉन्ग टाइम, कैसी हो तुम?
2: खातून कौन थी?
3: एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस।
2: तो पुलिस में जाती, वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हर पति एनिमल,
4: एक पति दो दो कंफ्यूजन और फुल फैमिली एंटरटेनमेंट। 15th मई से प्रजापति पांडे मचाएंगे ऐसा बवाल कि आप भी पूछेंगे कौन पत्नी कौन वो, पति पत्नी और वो दो, इन सिनेमाज नेशन वाइड फ्रॉम द 15th ऑफ मई।
5: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
6: यू मीन सबटल ट्रेवल?
5: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर,
6: एक बार आजमाई जरूर सबटल ट्रेवल।
5: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
6: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
7: Call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161-250-1250. That's 0161-250-1250.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything.

0: रखे नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक। माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स,
2: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
3: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
4: यू मीन सफल ट्रेवल?
3: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
4: एक बार आजमाइए जरूर सफल ट्रेवल।
3: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
4: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
5: कॉल सफल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250। दैट्स 0161 250 1250। The

0: वाकई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप भी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। 3 आवर्स के अलग अलग फीचर्स फर्स्ट आवर आपके लिए लेके आते हैं यादों की बारात, सेकंड आवर होता है इमोशन ऑफ द डे एंड थर्ड आवर होता है गजल या कवाली। तो आज क्या सुनाएगी अश्विनी, पता चलेगा ही बिल्कुल थर्ड आवर तक। हां जी, तो अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, हमारे सारे प्यारे प्यारे लिसनर्स जो है अपनी अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं। जो हमारे साइलेंट लिसनर्स हैं आप भी अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं, कुछ नहीं एक स्माइली भेज दीजिए, हमें पता है आप शो एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई 7:15 हो चला है समय, वेंसडे, इट्स वंडरफुल वेंसडे एंड फील गुड वेंसडे। वंडरफुल वेंसडे मेरे लिए क्योंकि मेरा बड़ा चहीता दिन है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है वेंसडे, दो दिन इधर दो दिन उधर। एंड फील गुड वेंसडे बिकॉज फील गुड सॉन्ग आपको सुनाने वाली हूँ सेकेंड आवर में। अब ऐसा तो होगा नहीं कि अश्विनी आई और फिर कुछ काम धाम नहीं दिया, कोई असाइनमेंट नहीं दिया, हाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना। तो आज की असाइनमेंट क्या है, देखिए हम लोग ऐसे कंट्री में रहते हैं कि जहाँ बिना जैकेट्स निकलना बहुत मुश्किल है ना, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है तब भी, क्योंकि बहुत अगर हीट है तो अपने हाथों का हम लोग रक्षण करने के लिए आया अपने हाथों को धूप से बचाने के लिए फिर भी हम कुछ जैकेट पहनते हैं। सो मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के पास में कितने जैकेट्स हैं, ओके, सीजन वाइज भी है, चलिए कि भाई विंटर्स में है तो थिक जैकेट्स हैं, फिर लॉन्ग जैकेट्स भी हैं, फिर समर जैकेट्स भी हैं, फिर रेन जैकेट्स भी हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जैकेट्स आपके पास कितने। मेरे पास में, मैं एक्चुअली गिन रही हूँ अभी, है ना, क्योंकि आते आते मेरे जहन में ये सवाल आया जब मैंने अपना जैकेट लिया घर से निकलते समय, मैं लाइक यार ये सवाल सही रहेगा क्योंकि मेरे यहाँ पे भी जैकेट्स इतने टंगे रहते हैं ना, एंड आई एम लाइक पूछना चाहिए। तो कितने नंबर ऑफ जैकेट्स, मैं अगर आपको रफली बताऊँ मेरे पास कितने हो सकते हैं, सो टोटली 15-20 के बीच में जैकेट्स हैं मेरे पास में, ओके। चलो मैंने नंबर दे दिया, आप भी फटाफट बताओ आपके यहाँ पे कितने जैकेट्स हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिल सकते हैं 128 रुपीज एंड 70 पैसे, और याद रखिए आप ट्रांसफर्स कर सकते हैं वाया ब्रांच ऑनलाइन या आप यूज कर सकते हैं यूनो SBI UK मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. Like a radio. The wait is now over. The King of Melody. Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
2: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
1: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
2: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
1: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your

0: the Track was brought to you by LikeRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Leica Radio app and website on LikeRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Leica Radio.
2: The Evening Show with Ashwini.
3: भाई जैकेट्स का सवाल मैंने पूछा है तो बहुत सारे लिसनर्स जो हैं फटाफट अपनी जैकेट्स गिन गिन के मुझे भेज रहे हैं. मिसेस पैकी चैंग वो कहती कि उनके पास में 16 जैकेट्स हैं. आई हैव 4 सीजन जैकेट्स एंड व्हाट टू डू विद द इंग्लैंड वेदर. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई मीन कि देखो अगर सीजन चाह रहे तो हमें जैकेट भी तो उस हिसाब से चाहिए ना, है ना. एक जैकेट तो सब जगह पहन नहीं सकते. वही नीलेश जी कहते हैं कि भाई मेरे पास में 4 जैकेट्स हैं, 2 फॉर वर्क, 1 आर्सेनल, 1 कैजुअल मेरे लिए उतने काफी है. बहुत अच्छी बात है जी, बिल्कुल. एंड अरुणा जी वहां पे एक तो उन्होंने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया है, उन्होंने बाजरे का रोटला बनाया है एंड उन्होंने दूधी की सब्जी भी बनाई है. उन्होंने कहा कि अश्विनी आ जाओ यहाँ पे खाना खाने के लिए. अब कमिंग टू जैकेट्स, उनका कहना कि उनके पास में भी 20 जैकेट्स तो होंगे सब मिला के, इंक्लूड मतलब शॉल्स ये स्कार्फ्स वगैरह मिला के. बिल्कुल ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना. देखो ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाते हैं ना हमारे सिर में. पर बड़ा अच्छा लगता है ये इंटरेक्शन आप लोगों के साथ में. तो जो साइलेंट लिसनर्स अभी भी सोच रहे हैं अश्विनी को मैसेज करें ना करें, बिल्कुल करिए. हमारे कई नए साइलेंट लिसनर्स की तरफ से सिर्फ एक हेलो वाला इमोजी मुझे आया और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं. तो आप लोगों के मैसेजेस के लिए एक तो तहे दिल से धन्यवाद. और दूसरा मैं आप सबसे पूछना चाह रही थी कि देखिए आप सब जो हैं वो संगीत से जुड़े हैं. हम जितने भी रेडियो प्रेजेंटर्स यहाँ पे आते हैं लाइका गोल्ड पे या लाइका रेडियो पे, ओवरऑल लाइका मीडिया में जितने भी रेडियो प्रेजेंटर्स हैं, तो हम सभी आप लोगों के लिए बड़े ही एंटरटेनिंग शोज लेके आते हैं जिसमें होता है संगीत. संगीत जो है, म्यूजिक जो है, ये बहुत ही हीलिंग होता है ना, ये थेरेपी का काम करता है. तो शाम की ये 3 घंटे जो है बहुत से लोगों का टीवी देखना हो जाता है बंद, क्योंकि वो ट्यून इन करते हैं लाइका गोल्ड रेडियो लंदन में एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. तो ये म्यूजिक जो है आपका मूड अपलिफ्ट करता है, आपकी हीलिंग करता है. तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो रेडियो प्रेजेंटर्स है वो हीलर्स भी हैं, क्योंकि वो हीलिंग का काम कर रहे हैं थ्रू म्यूजिक? आपको क्या लगता है जरूर बताइए. नेक्स्ट ट्रैक में लाई हूँ मुकेश जी की आवाज में संगम फिल्म से बोल राधा बोल. व्हाट अ फैंटास्टिक वे ऑफ प्रपोजिंग.
1: ये है
0: लाइका रेडियो
2: द इवनिंग शो विद अश्विनी.

0: भैया इस आवर का पहला फीचर जो है उसमें भी हम पहुंच गए, बहुत जल्दी समय जा रहा है ना, कल का शो भी बहुत फास्ट हुआ, आज का शो अभी तो आगे मैं बैठी थी यहाँ पे और देखो कितना फटाफट हम लोग चले पहुंचे हैं यादों की बारात की तरफ। तो ये जो ट्रैक है, प्लीज वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लीजिए, मधुमती फिल्म से लता मंगेशकर एंड मन्ना डे की आवाज में, कौन सा गीत हो सकता है यादों की बारात में, चढ़ गयो पापी बिछुआ। एंड यस यस, जैकेट की गिनती आने दो, मैं यहाँ पे बिल्कुल देख रही हूँ सारे नंबर्स।
1: Zyka Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. Yaad

0: मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है. तो 8:40 आप सभी ने ट्यून इन किया आप सबका पसंदीदा लाइका गोल्ड रेडियो लंदन में एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. मेरा नाम है अश्विनी, दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. एक बड़ी ही अजीब और बड़ी ही टेस्टी चोरी हुई है. तो यूरोप में एक बेहद अनोखी चोरी ने सबका ध्यान खींच लिया, जहां एक चोर ने करीब 12 टन बड़ी ही फेमस चॉकलेट है उससे भरी एक ट्रक को लेकर वो फरार हो गया. अब इस अजीबोगरीब घटना के बाद में सोशल मीडिया पर मीम्स की तो बाढ़ आ गई है और सब कह रहे हैं कि क्या बात है, बड़ी स्वादिष्ट चोरी हुई. स्वादिष्ट खाना खाते खाते आप सभी सुन रहे हैं ये स्वादिष्ट शो, और इस शो में अगला गीत तो आप सबके लिए मैं लेकर हाजिर हूँ. उसके पहले थोड़ी सी कमर्शियल्स भी हो जाए.
1: Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. Like a
2: radio. Are we there yet?
3: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
2: Relax, I've booked the Uber already.
3: How? My roaming isn't even working yet.
2: I switched to Simsy before we left London.
3: Simsy? Since when are you the tech expert?
2: Since I decided I want a stress-free holiday.
4: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
2: T's and C's apply.
5: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to Derby Theatre 12 to the 16th of May. For tickets and more info, click derbytheatre.co.uk. Radio partner Leica Radio.
6: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
7: यू मीन सफल ट्रेवल?
6: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
7: एक बार आजमाइए जरूर सफल ट्रेवल.
6: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
7: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
8: कॉल सफल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250 1250.
9: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton, with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton, Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
10: एक बढ़िया कड़क गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो आए हाय मजा आ जाए.
11: अरे समझो हो गया, रॉयल चाय है ना, अब भी बन जाएगी. सिर्फ पैकेट खोलो और गर्म पानी में घोल लो, चाय तैयार, वो भी रॉयल टेस्ट के साथ. रॉयल चाय, झटपट, कहीं भी कभी भी.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
1: Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1 you'll get 129.3 Indian rupee, 376.61 Pakistani rupee, 438.76 Sri Lankan rupee, 165.94 Bangladeshi taka, 86.45 Afghani.
13: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
13: Leica Radio.
1: Formerly known as Asian Sound Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: Gold is currently trading at £111.49 per gram.
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. Like a radio. Ashwini, brightening up your weeknight.
14: India
1: cricket score updates, brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: भाई आईपीएल मैच में फिलहाल मैच चल रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच, तो आरसीबी नीड्स 10 रन्स इन 10 बॉल्स.
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. Like a
0: radio. भाई बिलाल के घड़ियां एक बार देखते हैं फिर से, टाइम कितना हुआ. इट्स 45 मिनट्स पास्ट 7. धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं न्यूज की तरफ. अभी फिलहाल और 15 मिनट्स बाकी है. अच्छा, आज हुआ क्या है कि मैंने शायद बहुत से लोगों के वार्डरोब्स जो हैं वो खुलवा दिए विद माय क्वेश्चन कि आपके पास में कितनी जैकेट्स हैं. डॉक्टर अशोक पटेल कहते हैं कि अश्विनी तुम्हारे पास 20 जैकेट है, यानी कुल मिला के तुम्हारा वार्डरोब जो है अच्छा खासा बड़ा वार्डरोब होगा. नहीं नहीं नहीं अशोक जी, ऐसा कुछ नहीं है. सीजन वाइज जो जैकेट्स लगते हैं उतने जैकेट्स ही सामने आते हैं. एंड आई होप मेरे घर वाले ये बिल्कुल भी शो अभी नहीं सुन रहे होंगे, क्योंकि मैं तो 20 जैकेट कह रही हूँ. पता नहीं वो कहाँ कहाँ से कितने नंबर ऑफ जैकेट ढूंढ के निकालेंगे और वो असली नंबर यहाँ पे भेज देंगे. बट द गुड पार्ट इज कि वो आके यहाँ पे शो नहीं कर सकते हैं. सो मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से 15 से 20 जैकेट हैं मेरे पास में. सो मैं अभी कितना इंसान झूठ इतना ज्यादा तो नहीं बोल सकता ना, उतना ही बोलेगा. अच्छा, व्हेन आई आस्क्ड ऑल ऑफ यू कि क्या आपको लगता है कि सारे रेडियो प्रेजेंटर्स उन्हें आप हीलर्स कहेंगे, क्योंकि वो अपने शोज द्वारा आप लोगों की हीलिंग करते हैं. आप सभी ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया है हम सबके लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं हम सबके लिए. और पता है, आप लोग जब ये मैसेजेस हमें भेजते हैं तो ये हमें कितना हील करते हैं, क्योंकि हम भी तो आप लोगों की तरह ही बिल्कुल ह्यूमन बींग्स हैं. हमारा भी एक दिन पूरा निकलता है, उसके बाद शाम में जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो उस पूरे दिन भर में हमारे साथ में भी बहुत सारी चीजें होती हैं. लेकिन पता है सबसे अच्छी चीज क्या है, ये जो हॉट सीट है ना, जब यहाँ पे आते हैं और ये जो माइक है जहाँ पे हम अपना थ्रोट चक्रा यूज करके आप सबसे कम्युनिकेट करते हैं, इतनी सुंदर फीलिंग होती है आप सबके मैसेजेस से. और जब आप लोग अपने घर की बनी चीजें हमें बताते हैं, क्या खाने में बना ये बताते हैं, आपकी खुशियां आपका दुख, जब आप ये सारी चीजें हमसे कम्युनिकेट करते हैं बांटते हैं, तो बिल्कुल हम आपके फैमिली का एक मेंबर तो बन ही चुके हैं, क्योंकि आपके रेडियो के द्वारा हम आप लोगों के घर में पहुंच चुके हैं, है ना. तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप और हम जो है, हम है म्यूजिकल फैमिली. बड़ी साफ दिल इंसान है हम सभी ऐसा मेरा अंदाज है. तो साफ दिल इंसानों के लिए मेरी तरफ से दो और गीत. एक गीत होगा लता मंगेशकर की आवाज में आकाश दीप फिल्म से, एंड आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू अरुणा शाह जी. उन्होंने ये गीत 6 साल पहले जब यहाँ पे शो में मैं आई थी तब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. सो अरुणा जी, थैंक यू सो मच इंट्रोड्यूसिंग मी टू दिस ट्रैक. और उसके बाद में हम किशोर कुमार की आवाज में दाग फिल्म से सुनेंगे और एक बढ़िया सा गीत, मेरे दिल में आज क्या है. तो बिल्कुल अपने डिनर्स को एंजॉय कीजिए और साथ में एंजॉय करिए द इवनिंग शो विद अश्विनी भी यहीं पे.
15: Star Track of the Hour sponsored by Star Tours. Coach, Eurostar, your flight. Aap choose karo apna style. Baki sab Star Tours experience sambhal leta hai. Visit startours.co.uk.

0: Leica Radio.
1: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। हो गया भाई खाना वाना। अब खाने के जब टॉपिक निकलता है तो इतनी सारी पिक्चरें आप लोग हमें भेजते हैं, और आपने क्या सोचा कि मैं कुछ खा पी के नहीं आई, मैं भी अपनी चाय लेके बैठती हूँ मसाला चाय और भाई हमारे मार्केटिंग हेड है कमलेश जी, उन्होंने वड़ा पाव लाया था बाहर, तो उन्होंने हम सबको वड़ा पाव भी खिलाया। तो ऐसा मत सोचिए कि हम लोग खाते पीते नहीं हैं, यहाँ पे सिर्फ गपशप करते हैं। खाते पीते हुए मस्ती करते हुए गपशप चलती रहती है आप लोगों के।

0: कुछ तो स्पेशल डिश बननी ही बननी होती है एंड उस दिन वैरायटी बिकॉज पूरा घर साथ में होता है, तो आई एम श्योर आपके यहाँ पे भी ऐसा कुछ ना कुछ रिचुअल होता होगा वीकेंड का।
1: द इवनिंग शो विद अश्विनी।

0: and via the SBI UK branch.
1: £1 in British sterling could get you up to 128.70 rupees. Remember to make your transfers via branch, online or by using the YONO SBI UK mobile app.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
1: मैं जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. अच्छा भाई, जो जो लोग सिंगापुर जाके आए हैं, वहां रह चुके हैं या जिनके रिलेटिव बच्चे, एक्सटेंडेड फैमिली जो भी वहां पे रहते हैं, जरा उनसे ना ये मुझे कन्फर्म करके बताइएगा. एनी वे रोज शाम में हम लोग मिलते हैं यहाँ पे. तो ये जो एक न्यूज है ना, इसने जरा तहलका मचा रखा है ऑन सोशल मीडिया. तो सिंगापुर में एक महिला ने चेतावनी दी है जिसे सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक रही है. वहां जमीन पर गिरा एक आम भी आपके जेब पर करीब 4.25 लाख का डाका डाल सकता है. सिंगापुर में रह रही प्रियंका सिन्हा नाम की महिला का सोशल मीडिया पोस्ट इस वक्त तूफान मचा रहा है. प्रियंका ने बताया कि सिंगापुर के कायदे कानून इतने सख्त है कि वहां सार्वजनिक पेड़ों से फल तोड़ना तो दूर, नीचे गिरा हुआ फल उठाना भी जुर्म की कैटेगरी में आता है. अगर आपने गलती से भी सरकारी पेड़ का आम उठा लिया तो वहां 5,000 सिंगापुर डॉलर यानी लगभग 3.5 लाख इंडियन रुपीज का जुर्माना पड़ सकता है. अच्छा, ये जो एज आई सेड कि भाई आई हैव नेवर बीन टू सिंगापुर बिफोर दिस, पर अगर आप रह चुके हैं तो इस खबर की पुष्टि, मतलब आप कंफर्म करके बता सकते हैं कि क्या सचमुच ऐसा होता है. धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं सेकेंड आवर का जो फीचर है इमोशन ऑफ द डे. इट्स वंडरफुल वेंसडे फॉर मी एज आई सेड एंड इट्स फील गुड वेंसडे फॉर यू ऑल. तो फील गुड वेंसडे में मैं कौन सा गीत लेके आई हूँ, रूना लैला की आवाज में घरौंदा फिल्म, विच वॉज रिलीज इन 1977. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ट्राई.
0: Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. Leica
2: Radio. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
4: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ.
5: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मेक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल.
4: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
6: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
7: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply... for quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
0: Advertise here now. Call 0161 250 8222 or email sales@leicaradio.com. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24/7 and with your favourite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com.
8: This is Leica Radio.
0: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
8: This is Leica Radio.
0: Greater Manchester.
8: Leica Radio.
9: Emotion of the day.

0: What a beautiful track. लता मंगेशकर की आवाज में मंजिल फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत। भाई कहना चाहेंगे धन्यवाद आप सभी को जो हमें इतना रेगुलरली मैसेजेस कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। संध्या भावसा जी, मिसेस पैकी चेंग, देन इट्स राजेश जी, रोशनी जी, अमिता जी, नीलेश तन्ना जी, उसके बाद में है अजिंक्य जी, हरप्रीत जी, आप पैनकुवर से हमें सुन रही है, अनु जी, तोची जी, हरीश जी, सुमेला जी, प्रज्ञा जी, नंदा प्रवीण जी, उसके बाद रसीला जी, योगेंद्र जैन, जहीर भाई, अरुणा जी, रोजी रानी जी, एंड उसके बाद में सिंपल जी, भारती, जैस्मिन जी, बेप्सी जी, ज्योति जी, गुल जी, दिव्या जी, एजाज जी, डॉक्टर अशोक पटेल, मिथुल पटेल, अर्जुन जी, एंड ये कौन है भाई, जी पंडित सुधीर शर्मा जी। देखिए मैंने कहा था ना कि साइलेंट लिसनर्स, आज इन्होंने भी हमें नमस्ते कही है, थैंक यू सर, नमस्ते। काशिफ जी, मिसेस शेख, विनोद जी, उल्लास जी, एंड उसके बाद नौशाद जी, आप हमें सुन रहे हैं मॉरिशस में, क्या बात है। महेंद्र पटेल जी, सहर जी, ओए मजा आ जाता है जब आप लोगों के ऐसे मैसेजेस आते हैं ना बैक टू बैक। अगला जो गीत मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ, Oh my God, what a beautiful track. साजन बिना सुहागन, येसुदास की आवाज में मधुबन खुशबू दे पाए।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.
2: The evening show with Ashwini.

0: अमेजिंग अमेजिंग ब्यूटिफुल ट्रैक. एंड ऐसे ट्रैक्स को ना मैं कहती हूँ ठहराव वाले ट्रैक्स, सुकून वाले ट्रैक्स. नेक्स्ट ट्रैक भी जो आपको सुना रही हूँ वो भी बड़ा ठहराव वाला ट्रैक है, तलत अजीज और लता मंगेशकर की आवाज में, बाजार फिल्म विच वॉज रिलीज इन 1982, उस फिल्म से सुना रही हूँ आप सबको अगला गीत. जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. आप लोगों के फीडबैक, आप लोगों का जिस तरीके से सपोर्ट हमें आता है, आई एम इन ग्रैटिट्यूड, क्योंकि हम सभी जो है ना एक्सपीरियंस से सीखते हैं. कई बार हम अपने हिसाब से कुछ चीजें करते हैं, कई बार दूसरों के हिसाब से चीजें करते हैं, पर जब एक बहुत अच्छे पोलाइट वे में और मीठे तौर पे जब लेन देन होता है शब्दों का और जब बहुत अच्छे तरीके से फीडबैक दिया जाता है ना, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है. एंड आई ऑलवेज से दैट आई एम ब्लेस्ड, आई एम इन ग्रेटिट्यूड कि आप सभी अपने टाइम में से टाइम निकाल के आप हमारा शो ट्यून इन करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं. एंड दैट्स द रीजन आई ऑलवेज से कि आप और हम हैं म्यूजिकल फैमिली. भाई एपिसोड नंबर 16 बाहर आ चुका है, इंडिया वीक शोकेस होस्टेड बाय अनुज और लाइका रेडियो नेटवर्क आर ऑफिशियल पार्टनर्स ऑफ इंडिया वीक फ्रॉम May 26th to May 31st. हमारे पहले जो एपिसोड्स आ चुके हैं बाहर उसमें है वेडिंग्स एंड बियॉन्ड, होम स्कूलिंग डिबेट, विल्स एंड प्रोबेट. और हम लोग हैं लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट. आप हमें सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब, अमेजॉन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे. Mica Extra is here. This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show. Mica Radio. The wait is now over. The king of melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
1: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
0: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
1: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
0: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
3: यू मीन सॉफ्टॉल ट्रेवल?
2: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
3: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टॉल ट्रेवल.
2: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
3: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
0: कॉल सॉफ्टॉल ट्रेवल 24 hours a day, 7 days a week ऑन 0161-250-1250. दैट्स 0161-250-1250.
4: दिस ईद Share the joy, no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
5: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free, butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, we bring you a special on India Week, hosted by Anuj Radia.
6: Saw Calpol Children's Medicine, and there was a little Indian girl on the box. Now, for me, that's a big change in how we're identifying and seeing ourselves. When my parents were shopping in Boots at that time for me, they would never have seen a little Indian girl on a box.
0: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your

0: Mica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 129.34 Indian rupee, 376.71 Pakistani rupee, 438.86 Sri Lankan rupee, 165.98 Bangladeshi taka, 86.53 Afghani.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
0: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: Gold is currently trading at £111.49 per gram.
0: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
1: लालेंगे एक बार घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. तो इट्स 52 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी. तीन आवर्स के तीन फीचर्स. पहला आवर यादों की बारात, सेकेंड आवर इमोशन ऑफ द डे, थर्ड आवर में गजल या कवाली क्या सुनाने वाली हूँ बताइए जरा क्या अंदाज़ है. फटाफट लिखना शुरू कर दीजिए. आप लोगों का साथ मिल रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं आखिरी गीत की तरफ. और यही गीत जो है हमें जाएगा 9 o'clock की न्यूज की तरफ.
0: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो.
3: सीटीवी एंड C5 प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम, प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर. इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में. रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ. हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ. विजिट www.eventimapolo.co.uk. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Leica Radio.
4: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
5: यू मीन सॉफ्टल ट्रेवल?
4: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
5: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टल ट्रेवल.
4: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
5: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
6: कॉल सॉफ्टल ट्रेवल 24 hours a day, 7 days a week ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250 1250.
7: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton with grills fired up and ready to serve you flame grilled Piri Piri favorites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
0: Leica Radio, the exclusive radio partner of the Signature Awards, this Friday at the Manchester Deansgate Hotel. This is the Leica Radio Network. Download the Leica Radio mobile app on your mobile devices. The radio network consists of Leica Radio Greater London, Leica Radio Greater Manchester, and Leica Gold Radio.
8: Bollywood's biggest 90s songs non-stop.
9: शादी तुझे से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं.
10: हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा.
11: Listen to Leica Radio 90s on Leica Radio mobile app, leicaradio.com and Alexa. Play Leica Radio 90s.
12: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit heartyhanks.com today. Hearty Hanks. Build your future before someone else does. Visit heartyhanks.com today.
0: Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161 250 8222 or sales at leicamedia.co.uk. Leica Radio Network.

0: क्या बात है जी, तीसरे आवर में आपकी हमारी एंट्री हो गई ना। ये सिलसिला है प्यार का, सिलसिला प्यार का। इस फिल्म से सुनाया आपको ये टाइटल ट्रैक, आशा भोसले की आवाज में सनम तेरी कसम से सुनाया, कितने भी तू कर ले सितम। जी हाँ, रूठना मनाना जो है वो चलते रहता है, कोई भी रिश्ता हो वहाँ पे रूठना मनाना तो आता है, और उसके सिर्फ मजा क्या है ना। प्लेन प्लेन यार, सब अच्छा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं तो बोर हो जाएगा, है ना। एंड आई एम श्योर आपने अपने पार्टनर के लिए ये गीत कभी ना कभी तो गाया होगा। थर्ड आवर में गजल या कव्वाली क्या सुनाने वाली हूँ, फटाफट लिख के भेजिए, क्योंकि अगला ट्रैक जो आपको सुना रही हूँ ज्वेल थीप से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में।
1: अश्विनी ब्राइटनिंग अप योर वीक नाइट्स,
2: ये है लाइका रेडियो।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिल रहा है 128 रुपीज एंड 70 पैसे। याद रखिए, ट्रांसफर्स आप कर सकते हैं वाया ब्रांच ऑनलाइन या बाय यूजिंग योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: The Evening Show with Ashwini.

0: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 18 मिनट्स पास्ट 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है आपका पसंदीदा इवनिंग शो, द इवनिंग शो विद अश्विनी। गोल्ड नाइट्स ओवरनाइट सर्विस है, अगर आप रात में काम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो जरूर सुनिएगा साथ में लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड रेडियो 2। तो कितने सारे आप लोगों के मनोरंजन के लिए हम रेडियो लेके आए हैं। एंड मोहम्मद रफी की आवाज में, लता मंगेशकर की आवाज में जुल थीव से ये ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ट्रैक आपको सुनाया। अब बढ़ते हैं आगे आर्टिस्ट ऑफ द वीक में, महेंद्र कपूर की आवाज में आपको सुना रहे हैं अगला गीत नागिन फिल्म से, और उसके बाद में जी हाँ सही पहचाना आप सबने, आज वेंसडे तो है गजल का गीत, गजल का गीत, गजल का टाइम। जगजीत सिंह की आवाज में तेरे खुशबू में बसे खत को मैं जलाता कैसे, उफ मतलब लिटरली उफ अर्थ से लिया है ये गजल आप सबके लिए। 1982 में ये रिलीज हुई थी।
1: Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: Leica Radio.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.

0: Puzzle. Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 8:33 PM. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। वंडरफुल वेंसडे फॉर मी एंड फील गुड वेंसडे फॉर यू। बिल्कुल आप सबने पूरा शो बहुत एंजॉय किया। अभी भी गाने चल रहे हैं भाई, मैं निकली नहीं हूं अभी स्टूडियो से बाहर, अभी टाइम है। नेक्स्ट ट्रैक जो आपके लिए लेके आई हूं किशोर कुमार की आवाज में, सागर फिल्म से। 1985 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और ये तो बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म रही उस समय। ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया, कमल हासन, क्या बात है, क्या बढ़िया बढ़िया जोड़ी थी यार वहां पे उस टाइम पे। एंड सागर जैसी आंखों वाली, अगेन वन ऑफ द ठहराव वाला सॉन्ग्स। सो जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके लिए ज्यादा ठहराव वाले सॉन्ग्स हम लेके आते रहते हैं। आप लोगों का साथ और आप लोगों का प्यार, इसी की वजह से तो हमारे शो हिट रहते हैं। अगला ट्रैक आप सबके लिए
1: ये है Laika Radio.
0: Laika Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.
3: The Evening Show with Ashwini.

0: Lisa Nasir on The Evening Show.
1: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
2: यू मीन सफल ट्रेवल?
1: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
2: एक बार आजमाइए जरूर साउथ हॉल ट्रेवल.
1: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
2: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
3: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250. दैट्स 0161-250-1250.
4: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
5: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
6: Atif Aslam, live in the UK.
7: To the O2 London on Sunday the 14th of June.
6: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner, Leica Radio.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is Leica Radio, Greater Manchester.
8: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 years of experience, 40,000 passengers every year. Star Tours is trusted for a reason, by travellers who appreciate familiar comforts. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
9: For £1, you'll get 129.38 Indian rupee, 376.74 Pakistani rupee, 438.96 Sri Lankan rupee, 165.96 Bangladeshi taka, 86.39 Afghani.
6: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
9: Gold is currently trading at £111.49 per gram.
0: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
6: Leica Radio.
10: ये लाइका गोल्ड, ये वाला ये टैगलाइन इतनी बार सुनते हैं. कभी ऐसे होता है कि आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं लेकिन ये गुनगुना जाते हैं, लाइका गोल्ड. इट हैपेंस विद मी, क्योंकि तीन तीन घंटे यहाँ पे शो करते हैं तो ये इतनी बार सुनते हैं हमारी ये जो टैगलाइन है हमारे रेडियो की, तो ये जहन में कहीं ना कहीं बस चुकी है. ओके जी, मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 43 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंडन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दो आखिरी गीत जो आपको सुना रहे हैं, ऑब्वियसली रात का समय है, ऑब्वियसली सोने का टाइम हो रहा है, तो सो गया ये जहां. ये गीत नितिन मुकेश, अलका याग्निक और शब्बीर कुमार की आवाज में आप सबको मैं सुना रही हूँ, तेजाब फिल्म से, विच वॉज रिलीज इन 1988. और उसके बाद जो है, Oh my God, that's such a beautiful track, Mr. Ashik, which was released in 1996. उस फिल्म से कुमार सानू की आवाज में मेरा चांद मुझे. तो आज तो खैर बारिश चल रही है ना हमारे यहाँ पे, रेनी था ना, कितना मौसम तो मतलब सुहाना ही हो रखा है फिलहाल, है ना. ठंड वापस आ गई है, बारिश हो रही है, सूर्य देवता बीच बीच में जब प्रसन्न होते हैं तब हम परेशान होते हैं, जब बारिश होती है तब हम परेशान होते हैं. कोई ना एक जैसे कोई हम कंप्लेन थोड़ी करते हैं, हम तो सिर्फ कहते हैं जो हमें लगता है ना। और इसी कहने में हमेशा की तरह ये कहूंगी कि भाई जीवन बहुत सुंदर है, लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए। प्यार जिंदगी में बहुत बहुत मीठी और बड़ी प्यारी चीज है, तो प्यार दो और प्यार लो। और नफरत, हम तो नफरत वाले हैं ही नहीं भाई। और पावर तो किसी को मतलब बर्बाद करने के लिए चाहिए, अगर पावर का यूज कर रहे हो तो ना करें, क्योंकि आपको किसी को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि यू बिलोंग टू अ म्यूजिकल फैमिली एंड दिस म्यूजिकल फैमिली इज ऑल अबाउट म्यूजिक, प्यार। एंड हमेशा की तरह इतना फिर से कहेंगे आप सबसे कि अपना ख्याल रखिएगा। ओके, कल मिलेंगे फिर से, 3 घंटे का शो होगा, मंडे से फ्राइडे मिलने आती है आपकी दोस्त आप सबसे शाम 7 बजे से लेके 10 बजे तक। ठंड ज्यादा हो रखी है, देख लीजिए हीटर वीटर लगा लीजिए। गुड नाइट, टेक केयर।

0: ये है
1: लाइका रेडियो।
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
3: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
4: यू मीन सॉफ्टल ट्रेवल?
3: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
4: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टल ट्रेवल।
3: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
4: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
5: कॉल सॉफ्टल ट्रेवल 24 hours a day, 7 days a week ऑन 0161 250 1250। दैट्स 0161 250 1250।
6: Need a car the halal way? Look no further. Halal Car Finance is now available in the UK with Ayan. No interest, no hidden fees, no compromise. Apply today at ayan.co.uk. Ayan, drive with Baraka. Subject to status checks. Representative APR 10.9%. This rate reflects Ayan's rental charges. We do not charge interest.
7: Leica Radio, the exclusive radio partner of the Signature Awards, this Friday at the Manchester Deansgate Hotel. Did you know you can get all the biggest showbiz news stories daily by logging on to LeicaRadio.com or the Leica Radio mobile app, powered by BizAsiaLive.com.
8: This is Leica Radio.
7: Get in touch. Advertise on Leica Radio Greater Manchester, the largest Asian commercial radio station in the northwest of England. Call now 0161 250 8222 or sales at LeicaRadio.com.
9: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
7: New Asian sound for the northwest of England.

0: ये है लाइका रेडियो CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में. रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमर स्मिथ. हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ. विजिट www.eventimapolo.co.uk. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो.
1: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
2: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
3: यू मीन सफल ट्रेवल?
2: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
3: एक बार आजमाइए जरूर साउथहॉल ट्रेवल.
1: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए
2: और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
3: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
4: कॉल साउथहॉल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250. दैट्स 0161-250-1250.
0: Leica Radio, the exclusive radio partner of the Signature Awards, this Friday at the Manchester Deansgate Hotel.
5: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-1801 and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
0: Advertise today on Leica Radio Greater Manchester. Call 0161-250-8222. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161-250-8222 or sales@leicamedia.co.uk. The biggest Asian love songs across Manchester. Leica Radio.